सुनने वालों एक मजे की बात सुनिए। एक रोमांटिक पिक्चर देखकर मैं घर आ रहा था, रास्ते में आरडी बर्मन का एक गाना गा रहा था कि अचानक वो मिल गई।

0: बीत जाएगी तेरी तृष्णा, भूल जा तू राधे कृष्णा, बन जाऊ मर गया
1: राधे श्याम।